0: Hey there, this is Mean Jen. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF A अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF A कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: Hi, I'm Anthony Andrews, and I'm the host of the new STMS radio show every Friday evening from 6 to 8 p.m. on YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: So, I'm a dog, and I just got adopted by this new human guy, and I'm starting to wonder how he got along without me. I mean, okay, something as simple as walking around the block. He's got this leash thing, and he puts me on one end and him on the other, and I'm just taking him around. I think he's afraid of getting lost. Without that leash and me guiding him along, I don't think he'd find his way back home. But it's kind of cute.
4: A person is the best thing to happen to a shelter pet. Be that person. Adopt. Brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org.